आयोजक दिदी बहिनी मीडिया हाउस स्टार यति इभेन्ट तथा पार्टी प्यालेस वसुन्धरा काठमाडौँ समय 2084 भदौ 20 गते शनिबार बिहान 11 बजेदेखि अपराह चार बजेसम्म सम्पर्क नम्बर 9576401।

आयोजक दिदी बहनी मीडिया हाउस स्टार एटी इवेंट तथा पार्टी प्यालेस वसुंधरा काठमांडू समय 2084 भदौ 20 गते शनिबार बिहान 11 बजे देखि अपराह 4 बजे सम्म। संपर्क नम्बर 98573301।

बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले जीऊ।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले मध्याह्नको ठीक 12 बज्यो।

आयो चक दीदी बहनी मीडिया हाउस स्टार एति इभेन्ट तथा पार्टी प्यालेस वसुन्धरा काठमाडौँ समय 2084 भदौ 20 गते शनिबार बिहान 11 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म सम्पर्क नम्बर 9576401।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले रातिको ठीक 8 बज्यो।